0: उन्होंने कहा कि हम गुनाहगारों की तरफ भेजे गए हैं।
1: لنرسل عليهم حجارة من طين
0: ताकि उन पर खंगर बरसाएं।
1: مسومة عند ربك للمسرفين
0: जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के यहां से निशान कर दिए गए हैं।
1: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين
0: तो वहां जितने मोमिन थे उनको हमने निकाल लिया।
1: फमा वजदना फीहा गैर बैत मिन अल मुस्लिमीन
0: और उसमें एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर न पाया।
1: वतरकना फीहा आयतन लिल्लजीन यखाफून अल अज़ाब अल अलीम
0: और जो लोग अजाब अलीम से डरते हैं उनके लिए वहां निशानी छोड़ दी।
1: वफी मूसा इज अरसलनाहु इला फिरऔन बिसुल्तान मुबीन
0: और मूसा के हाल में भी निशानी है जब हमने उनको फिरऔन की तरफ खुला हुआ मौजजा देकर भेजा।
1: फतवल्ला बिरुक्निही वकाल साहिरुन औ मजनून
0: तो उसने अपनी कुव्वत के घमंड पर मुंह मोड़ लिया और कहने लगा ये तो जादूगर है या दीवाना।
1: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم
0: तो हमने उसको और उसके लश्करों को पकड़ लिया और उनको दरिया में फेंक दिया और वो काम ही काबिले मलामत करता था।
1: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم
0: और आद की कौम के हाल में भी निशानी है जब हमने उन पर नामुबारक हवा चलाई।
1: मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम
0: वो जिस चीज पर चलती उसको रेजा रेजा किए बगैर न छोड़ती।
1: वफी समूद इज़ क़ील लहुम तमत्तउ हत्ता हीन
0: और कौम समूद के हाल में भी निशानी है जब उनसे कहा गया कि एक वक्त तक फायदा उठा लो।
1: فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون
0: तो उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की सो उनको कड़क ने आ पकड़ा और वो देख रहे थे।
1: فما

0: क्या उनकी अकलें उनको यही सिखाती हैं, बल्कि ये लोग हैं ही शरीर।
1: अम यकूलून तकव्वलहू बल ला युमिनून,
0: क्या कुफार कहते हैं कि इन पैगंबर ने कुरान अज खुद बना लिया है, बात यह है कि ये खुदा पर ईमान नहीं रखते।
1: फल्यक्तू बिहदीसिम मिथलिही इन कानू सादिकीन,
0: अगर ये सच्चे हैं तो ऐसा कलाम बना तो लाएं।
1: अम खुलिकू मिन गैर शैइन अम हुमुल खालिकून,
0: क्या ये किसी के पैदा किए बगैर ही पैदा हो गए हैं या ये खुद अपने तई पैदा करने वाले हैं।
1: अम खलकु समावाति वल अर्द बल ला यूकिनून,
0: या उन्होंने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, नहीं बल्कि ये यकीन ही नहीं रखते।
1: अम इंदहुम खजाइन रब्बिक अम हुमुल मुसैतिरून,
0: क्या उनके पास तुम्हारे परवरदिगार के खजाने हैं या ये कहीं के दारोगा हैं।
1: अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिउन फीही फल्याति मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिन मुबीन,
0: या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमान से बातें सुनाते हैं, तो जो सुनाता है वो सरीह सनद दिखाए।
1: अम लहुल बनातु वलकुमुल बनून,
0: क्या खुदा की तो बेटियां और तुम्हारे बेटे।
1: अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मग्रमिन मुथ्कलून,
0: ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, क्या तुम उनसे सिलह मांगते हो कि उन पर तावान का बोझ पड़ रहा है।
1: अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून,
0: या उनके पास गैब का इल्म है कि वो उसे लिख लेते हैं।
1: अम युरीदून कैदन फल्लजीन कफरूहुमुल मकीदून,
0: क्या ये कोई दाव करना चाहते हैं तो काफिर तो खुद दाव में आने वाले हैं।
1: अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह सुबहानल्लाह अम्मा युश्रिकून,
0: क्या खुदा के सिवा उनका कोई और माबूद है, खुदा उनके शरीक बनाने से पाक है।
1: वा

0: खुदा।
1: वो तो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने घड़ लिए हैं। खुदा ने तो उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। ये लोग महज जन्न फासिद और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चल रहे हैं, हालांकि उनके परवरदिगार की तरफ से उनके पास हिदायत आ चुकी है।
0: أم للإنسان ما تمنى؟
1: کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟
0: فللہ الآخرة والأولى،
1: آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔
0: وکم

0: उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और ना किसी जिन से।
1: फबिअय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ,
0: गुनहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों और पांवों से पकड़ लिए जाएंगे।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ,
0: यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे।
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن,
0: वो दोजख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: वलिमन खौफ मकाम रब्बिहि जन्नतान,
0: और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं।
1: फबिअय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: अफनान,
0: उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।
1: फबिअय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: फीहिमा अय्नान तजरियान,
0: उनमें दो चश्मे बह रहे हैं।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ,
0: उनमें सब मेवे दो दो किस्म के।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: मुत्तकीन अला फुरुशिन बतायनुहा मिन इस्तबरकिन वजनल जन्नतैन दान,
0: अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: फी

ताकि जो मतलब तुमसे फौत हो गया हो उसका गम न खाया करो और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो और खुदा किसी इतराने और शेखी बघारने वाले को दोस्त नहीं रखता।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद। यहां तक जो कुछ जिक्र किया गया है ये मदीने के दाखली हालात से मुताल्लिक था। बैरून मदीना मुसलमानों के सबसे कड़े दुश्मन कुरैश थे और 13 साल तक जबकि मुसलमान उनके जेरे दस्त थे, दहशत मचाने, धमकी देने और तंग करने के तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर चुके थे, तरह तरह की सख्तियां और मजालिम कर चुके थे। मुनज़्ज़िम और वसी प्रोपेगेंडे और निहायत सबर आजमा नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल में ला चुके थे। पर जब मुसलमानों ने मदीना हिजरत की तो कुरैश ने उनकी ज़मीनें, मकानात और माल और दौलत सब कुछ जब्त कर लिया और मुसलमानों और उनके अहलो याल के दरमियान रुकावट बनकर खड़े हो गए, बल्कि जिसको पा सके कैद करके तरह तरह की अजियतें दी। फिर इसी पर बस न किया बल्कि सरबराह दावत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को कत्ल करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की दावत को बेखौबुन से उखाड़ने की धमकियां देने लगे और उसके साथ खौफनाक साजिशें की और उससे रुबा अमल लाने के लिए अपनी सारी सलाहियतें सर्फ कर दी। जब मुसलमान किसी तरह बच बचा कर कोई 500 किलोमीटर दूर मदीना की सरजमीन पर जा पहुंचे तो कुरैश ने अपनी साख का फायदा उठाते हुए घिनौना सियासी किरदार अंजाम दिया। यानी ये चौका हरम के बाशिंदे और बैतुल्ला के पड़ोसी थे और उसकी वजह से उन्हें अहले अरब के दरमियान दीनी क़यादत और दुनियावी रियासत का मनसब हासिल था। इसलिए उन्होंने जजीरतुल अरब के दूसरे मुशरिकीन को भड़का और वरगला कर मदीने का तकरीबन मुकम्मल बायकॉट करा दिया, जिसकी वजह से मदीना की दरामदात निहायत मुख्तसर रह गई, जबकि वहाँ मुहाजरीन पनाहगीरों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। दर हकीकत मक्के के इन सरकशों और मुसलमानों के इस नए वतन के दरमियान हालत जंग कायम हो चुकी थी और ये निहायत अहमकाना बात है कि इस झगड़े का इल्ज़ाम मुसलमानों के सर डाला जाए। मुसलमानों को हक पहुंचता था कि जिस तरह इनके अमवाल जब्त किए गए थे उसी तरह वो भी इन सरकशों के अमवाल जब्त करें, जिस तरह उन्हें सताया गया था उसी तरह वो भी इन सरकशों को सताएं, और जिस तरह मुसलमानों की जिंदगियों के आगे रुकावटें खड़ी की गई थी उसी तरह मुसलमान भी इन सरकशों की जिंदगियों के आगे रुकावटें खड़ी करें और इन सरकशों को जैसे को तैसे वाला बदला दें ताकि उन्हें मुसलमानों को तबाह करने और बेखौबुन से उखाड़ने का मौका न मिल सके। ये थे वो कज़ाया और मसाइल जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को मदीना तशरीफ लाने के बाद बहैसियत रसूलो हादी और इमामों कायद वास्ता पेश रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इन तमाम मसाइल की तय मदीना में पैगंबराना किरदार और कायदाना रोल अदा किया और जो कौम नरमी और मोहब्बत या सख्ती और दरिश्ती जिस सलूक की मुस्तहिक थी उसके साथ वही सलूक किया और उसमें कोई शुबा नहीं कि रहमत और मोहब्बत का पहलू सख्ती और दुरुस्ती पर गालिब था। यहाँ तक कि चंद बरसों में ज़माम-ए-कार इस्लाम और अहले इस्लाम के हाथ आ गई। सामईन, आज हम अपने इस सिलसिले को यहीं पर बर्खास्त करते हैं और इंशाअल्लाह अगले आने वाली नशिस्त में हम नए माशरे की तश्कील, मस्जिद नबवी की तामीर और मुसलमानों में भाईचारगी जैसे मामलात का जिक्र करेंगे। इसके साथ ही कासिम भट्टी को अगली नशिस्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगेबान।
0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।

0: नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: उसको लग जाएगी। आप खुद हर एक को बच जाते हैं, ये बजना उसको लग जाएगा। आप खुद एंग्जाइटी से लड़ रहे हैं और बच्चे को एंग्जाइटी से बचाना चाहते हैं। बच्चा वो नहीं सीखता जो आप लेक्चर फरमाते हैं, बच्चा वो बनता है जो आप होते हैं। हाँ, या आपका एंटी बनेगा या आपकी कॉपी बनेगा। कैसे? अगर आप उसके पसंदीदा बन गए तो आपकी कॉपी बन जाएगा।
1: ट्रू।
0: अगर आपने उसको बेजार कर दिया तो वो आपकी बगावत में, आप मस्जिद जाते थे वो मस्जिद के करीब से गुजरना पसंद नहीं करेगा।
1: ट्रू ट्रू।
0: तो अगर आप जब आप उसके पसंदीदा आदमी नहीं होते और आप उसे कहते हैं सिगरेट छोड़ दो, वो आपको छोड़ देता है। जब आप उसके पसंदीदा आदमी नहीं होते तो आप उसे कहते हैं उस दोस्त से ना मिलना, तो वो आपको बताना छोड़ देता है। तो ये फिर अम्मी अबू होना बड़ा प्रोजेक्ट है और उसकी सर्टिफिकेशन लेते नहीं है और अबू बन जाते हैं।
2: Now we are also again going for a musical break, and then we'll continue with our discussion after we come back.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: वेलकम बैक। और अब हम दोबारा अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सर, जैसे हम बुक के एंड पे जाते हैं तो वहाँ पे ही ऑल्सो डिस्कसेस 6 पैराडाइम्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। दीज आर थिंक विन विन, थिंक लूज विन, थिंक विन लूज, थिंक विन।

0: no deal and think lose-lose. List थोड़ी लंबी है, लेकिन इनमें से एक दो हाँ elaborate कर दें ज़रा shortly कि कौन से you know paradigm का क्या result निकलता है.
1: ये बड़ा important सवाल है. मैं अगर summarily बताऊँ, रिश्तों को वो चला सकता है जिसके ज़हन में गुंजाइश है दूसरे आदमी के लिए. जो चाहता सिर्फ अपने आप को है और दूसरे ने इस्तेमाल होना है, वो इन द लॉन्ग रन रिश्ते नहीं चला सकता. पहली अब इसमें हमें माइंड सेट रिक्वायर है. पहला माइंड सेट क्या है? थिंक लूज लूज. ये वो बंदे होते हैं जो खुद भी नहीं खेलते, दूसरे को भी नहीं खेलने देते.
0: इनकी
1: एक लंबी सी टांग
0: होती है, बल्ला छोड़ के भाग देते,
1: विकेट लेके भाग जाते. वो कहता है अगर मैं कि अगर मुझे बारी नहीं देनी किसी को भी नहीं देनी. ये है थिंक लूज लूज. एक होते हैं जो थिंक लूज विन है, जो बड़े ही अल्ट्रुइस्टिक होते हैं. वो मतलब टू काइंड है. वो कहेंगे मैं हार जाऊंगा, तुम जीत जाओ, मेरी खैर है. अमियां ऐसी करती हैं और वो अपना नुकसान करती हैं. यानी जिस बच्चे के लिए आपको जीना चाहिए था, आपने अपना सारा कुछ उस पे वार के खुद को खत्म कर दिया. टाइम
0: कहीं ना कहीं वो अपनी सेल्फ को इतना ज्यादा बिच जाती हैं कि बच्चे भी एक टाइम आता है.
1: अच्छा, इसमें ना वासिफ साहब का एक जुमला लें आप, कि जो दिया होता है ना, दिए की रोशनी लोगों को दें, दिए का तेल ना दें. तो अम्मी जब खुद को फिदा कर देती है बच्चे पे, तो बच्चे के लिए जीना था और बच्चे के लिए मर जाती है.
0: और माँ अक्सर क्या करती है कि अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देती, तो एक टाइम आता है कि बच्चे भी नहीं देती, क्योंकि उनको होता है कि बस ठीक है.
1: हस्बैंड वाइफ को देख लें, हस्बैंड वाइफ को देख लें कि जब आप हमेशा हार के अगले को जितवा रहे हैं, तो उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा. उससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि उसके लिए फिर आप बचेंगे ही नहीं, और अपने आप के लिए भी नहीं बचेंगे, और जो अपना नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता. तो थिंक लूज विन के साथ एक प्रॉब्लम है. फिर है थिंक विन लूज. अब थिंक विन लूज क्या होता है कि मैं तुम्हें, तुम्हारी हार में मेरी जीत है. ये वो बंदे होते हैं जो मेक श्योर करेंगे कि तुम्हारी टांग खींचेंगे,
2: लेग पुलिंग पे जाएं और
1: ऊपर नहीं जा सकते, तो किसी को नीचे कर देते हैं और आखिर में वो बच जाते हैं.
2: ट्रू ट्रू.
1: तो ये थिंक विन लूज वाले हैं. अच्छा, फिर एक और है जो बड़ा दूर से बड़ा अच्छा लगता है, और अक्सर लाइक लोग ऐसे होते हैं. थिंक विन. जाती सक्सेस, पर्सनल सक्सेस,
0: वो सब
1: सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं सोच रहे, पर फायदा भी तो नहीं सोच रहे ना. कायनात की
0: ऐसे लोग कभी टीम लीडर्स,
1: टीम लीडर नहीं बनते. कायनात की नेचर ये नहीं है. कायनात इंटरडिपेंडेंट है, और वो एक हरकत कर रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट और हाइपर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं. मैं किसी पर डिपेंड नहीं
2: करता. वो कंट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और यूजुअली पेरेंट्स, लीडर्स और भी बहुत सारे लोग अपनी इस कंट्रोलिंग की जो आदत की वजह से आई थिंक इस चीज की तरफ बहुत ज्यादा
1: हो जाते हैं. थिंक विन विन पे आओ, मतलब उस पॉसिबिलिटी पे जहाँ हम दोनों जीते, उस पॉसिबिलिटी पे जहाँ म्यूचुअल ग्रोथ हो. उस देखें जिस तरह ये इदारा वो ऑप्शन बनाए जहाँ एम्प्लाई भी प्रॉस्पर करे, इदारा
2: भी करे.
1: ये ना हो कि एम्प्लाई ईंधन बन जाए और इदारा ग्रो कर जाए, या इदारे को इस्तेमाल करके एक एम्प्लाई निकल जाए.
2: जी जी.
1: तो ऐसी ऑप्शंस पे जाएं जहाँ दोनों जीत रहे हो, जहाँ दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन. या फिर नो डील की तरफ जाएं. ये जो आप चले जाते हैं ना, मैं खुद हार के तुम्हें जितवा देता हूँ, अल्टीमेटली ये डील खत्म ही हो जाती है. इसमें बड़े मसाइल पैदा होते हैं. तो इधर थिंक विन विन और नो डील, इसके बीच में खड़े होंगे तो कीमत अदा करनी पड़ेगी. आप इमोशनली टूटेंगे और हर्ट.
0: तो नो डील मींस के
1: यार एक बंदा वो ऑप्शन बना रहा है जिसमें सिर्फ उसको फायदा है, तो आप ना ऑप्ट करें ना. आप फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड अपने पास रखें, भाई मैं ऑप्ट ही नहीं करता. ये
2: और इसमें सबसे ज्यादा रोल आपको क्या लगता है कि पर्सनल विक्ट्री है that will lead to ultimate victory of the professional development as well.
1: ek jo mile mein bataun to pehle insaan dependent hone se independent ho, emotionally bhi aur sara. फिर बाय चॉइस इंटरपर्सनल रिश्तों में जाए.
2: ठीक है.
1: जो इमोशनल यानी वो डिपेंडेंट, यानी इमोशनल डिपेंडेंट बंदा रिश्ते में जाएगा, रिश्ता टॉक्सिक हो जाएगा.
2: ट्रू.
1: वो दूसरे को बेजार कर देगा. यानी तुम अपने इमोशन को अटेंड करवाने के लिए वो अगले को ड्रग के तौर पे यूज करेगा, फिर क्या करेंगे. तो दो इमोशनली इंडिपेंडेंट आदमी जब रिश्ते में आते हैं, वो रिश्ते देर पा होते हैं.
2: ट्रू.
1: वो हेल्दी होते हैं.
2: ट्रू.
1: वो सेटिस्फाइंग और फुलफिलिंग होते हैं. ताल्लुकात के बगैर जिंदगी का तजर्बा मुमकिन नहीं है.
2: ट्रू.
1: लेकिन डिपेंडेंट ताल्लुकात से बेहतर फिर आइसोलेशन हुआ करती है.
2: और सितेब, आपको क्या लगता है कि बुक का जो टाइटल है 7 Habits of Highly Effective People, इसमें जो वर्ड इफेक्टिव है वो किस हद तक, किस मीनिंग को डिफाइन करता है? हम क्या ऐसी चीज करें जो मतलब इन हैबिट्स में एक्सप्लेन हुई भी है, जो हमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव बनाए इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ एज वेल?
1: इफेक्टिवनेस आती है बैलेंस के साथ, और बैलेंस है 4 चीजों का. नंबर 1 स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ. बैलेंस स्ट्राइक होता है जब स्पिरिचुअल ग्रोथ को सेंटर पे रखें और बाकी तीनों डाइमेंशंस को वो गवर्न करे. तो अगर आप इन लोगों की जिंदगी को देखेंगे और इफेक्टिव होना चाहते हैं, तो ये अपने सेंटर के साथ जुड़े रहते हैं. स्पिरिट को सेंटर पे रखें, और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स गवर्न करें बाकी सारी जिंदगी को, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी दोस्ती या दुश्मनी हो, यानी एक वैल्यू सिस्टम आप ड्राइव करते हैं अपने सेंटर से
2: जी।
1: और सेंटर पे स्पिरिट रखें और फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल उसके ताबे करें और एक बैलेंस लाइफ गुजारें।
2: ठीक है,
1: बैलेंस ट्राई किए बगैर आप इफेक्टिव नहीं हो सकते।
2: ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।
0: इवेंचुअली इट ऑल यू नो, आपकी सारी जो सक्सेस है वो इन चार चीजों का जो एक बैलेंस है उसको मेंटेन करना है, और वहाँ से
1: इनमें से आप एक निकालें आपके बड़ा गर्व हो जाएगा। आप फिजिकल हेल्थ इग्नोर करके देखें, आखिर में देखिएगा
0: फिजिकल हेल्थ के बगैर तो कुछ भी नहीं है,
1: वो आप खाना
2: सारे के सारे ही उसमें लग गए,
1: या आप रिलेशनशिप पे फिदा हो जाएं और कुछ भी ना बने, वो रिलेशनशिप छोड़ जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: वो एफएससी जो मुफ्तों में
0: स्पिरिचुअलिटी भी बहुत,
1: वो फिर मुफ्ते भी गई और एफएससी भी गई
0: इवेंचुअली, और स्पिरिचुअलिटी
1: कुर्बान कर देंगे तो फौत होने के बाद लेतर पड़ेंगे तो फिर बैलेंस तो नहीं चलता। तो ये नहीं कर सकते आप, अफोर्ड नहीं कर सकते ना, आप अगर कर सकते हैं तो कर लें।
0: हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एफएलएल की मिस फातिमा रूज। आई वुड लाइक हर टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस सेशन।
3: अमना, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आज का रीडिंग सर्कल बहुत मजे का था। थैंक यू तैयब, थैंक यू जमीना और मिस आमना, मैंने पर्सनली खुद बहुत लर्न किया है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था आप लोगों से कि जैसे अब ट्रेंड जो है वो दूसरी चीजों की तरफ ज्यादा चला गया है, तो हम रीडिंग को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं बच्चों में, बड़ों में, इसको क्या किया जा सकता है इसके लिए?
2: मुझे ये एज ए टीचर लगता है कि रीडिंग सबसे ज्यादा अगर हम प्रमोट कर सकते हैं तो वो पहले तब खुद, जब वो एक बात की जाती है कि पहले खुद करेंगे तो हम बच्चों को प्रमोट कर सकेंगे उस चीज को करने में। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अगर आप लिफ्ट, आजकल के दौर में अगर आप एक लिफ्ट में मौजूद हैं और चार लोग हैं वहां पे, तीन के हाथ में मोबाइल है और एक वो इंसान जिसके हाथ में किताब है, वो हमेशा पुरकशिश लगेगा आपको। और किताब से जो नॉलेज आता है आपको, आई थिंक वो आपको जब जीने का सलीका सिखाता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है जेन जी जिसको हम कहते हैं, उनकी यही है दैट दे डोंट नो वेयर टू बिलोंग। तो आई थिंक सबसे ज्यादा जब आप उनको इस चीज की तरफ लेकर आते हैं कि पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे तो जिंदगी जीने का तरीका आप सीख सकेंगे और जिंदगी को डील करने का तरीका आप उससे सीख सकेंगे। तो किसी जो आपके मेंटर्स होते हैं स्पेशली, उनका ये बहुत बड़ा रोल होता है कि आप बच्चे को इस तरफ लेकर आए, जैसे हमने मोबाइल की तरफ, रील्स की तरफ, और बच्चे आपको बहुत कॉपी करते हैं एज रोल मॉडल्स। तो आई थिंक ये हम सब जो हम उस्ताद बैठे हैं और एक पूरी दुनिया में भी जो एक ट्रेंड है ये, कि हम पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त कि हम खुद पहले वो चीज अमल में लेकर आए ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन है हम उसको ये करें। अच्छा, और एक आखिरी बात, हमने हर चीज जो है वो पैसे से बहुत ज्यादा एसोसिएट करती हुई है, तो रीडिंग कहीं ना कहीं खत्म होती चली जा रही है। इस रीडिंग सर्कल की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हम ये बताएं कि ऐसी किताबें, ऐसी चीजें मौजूद हैं मार्केट में जिनको पढ़ने से आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और आप अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ भी आ सकते हैं, जो आपकी एट द एंड ऑफ द डे हीलिंग भी बहुत ज्यादा करती है।
0: बिल्कुल, जमीना ने सही बात की। आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट के बीइंग पेरेंट्स, आई एम आल्सो अ पेरेंट, तो पेरेंट्स के भी एक्शंस से बच्चे बहुत सीखते हैं। हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को देखा है, मैंने अपने वालिद साहब को देखा है बुक्स खरीदते हुए, बुक्स पढ़ते हुए, उनकी पूरी एक अलमारी होती थी जिसमें किताबें होती थी। तो कहीं ना कहीं हम उनको देख देख के फिर ग्रेजुअली काइंड ऑफ एक्शन से ज्यादा सीख जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं बचपन में, और फिर लेटर ऑन हमें भी खुद अच्छा लगता है किताबें पढ़ने। तो मेरी बल्कि गुजारिश भी होगी सब पेरेंट्स से भी जो भी सुन रहे हैं हमें, कि यू ऑल्सो नीड टू टेक द लीड बाय यू नो एक्टिवली इन्वॉल्व इन रीडिंग। खुद जाएं बच्चों के साथ बुक शॉप्स पे जाएं, किताबें अपने लिए भी खरीदें, उनके लिए तो खरीदते ही हैं हम सिलेबस की, और उनके सामने भी बैठ के पढ़ें ताकि वो आपसे यू नो आपके एक्शन से सीखें, क्योंकि वर्ड्स का जो है ना इम्पैक्ट वो इतना नहीं होता जितना एक्शंस का होता।
2: True, true.
0: And I would also like to thank eventually Dr. Tayyab for you know elaborating such a nice book in such an elaborate manner. And at the end, I would like to thank our dean, Dean of Faculty of Languages and Literature, Dr. Fahmida Sultana, for providing us with this opportunity. कि हम अपने reading circle को जो कि हमारे you know events होते रहते हैं उसको radio के platform पे लेके आएं. And I would also like to thank our colleague sir you know Philo sir well no he is Mahmood. And Ms. Fatima Aruja, our senior program coordinator, for organizing this event. Thank you so much and Allah Hafiz.

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 CC

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

वापस आते हैं जी और उनके एक और वस्फ की तरफ आपको लेके चलते हैं। उम्मीद है आपके लिए सबसे ज्यादा आज के प्रोग्राम में दिलचस्पी का बायस होगा। करना खुदा का क्या हुआ, जाहिर घर में बड़े भी थे, हाई एंड आई और पैसा भी काफी था, खुदा बेहतर जानता है। लोग कहते थे कि ये उस जमाने में जो बोतलें जाली बना के बेचते, मगर करना खुदा का क्या हुआ कि 26-27 साल की उनकी एज थी, 28 साल शादी का फैसला हो गया कि जी इनकी शादी का दिन मुकर्रर हो गया। और उन दिनों में शादियां ज्यादातर इतवार के दिन ही होती थी। हम लोग भी सारे मधु थे, मोहल्ले वाले तो मधु ही थे और भी बाकी लोग मधु थे। उन्होंने कहा जी, सब ने कहा कि यार तेरा जुस्सा जिस तरह है तू शलवार कमीज में ज्यादा अच्छा लगता है, तू शलवार कमीज पहन अपने शादी वाले दिन। तो मुसिर था कि नहीं जनाब, क्यों आप सब मेरे से, तू सर्दी हो मेरे को, तो मैं शहर में शीशे देख के ना अपने आप नू, अल्लाह ताला ने बड़ी सोहनी शक्ल दी है, सही मेरा कद बुते, मैं सूट पावांगा, पेंट कोट पा के जाना, टाई ला के जानी, सवाल ही पता नहीं होता, मेरी बीवी ने करवाया है मैनू, तुझे टाई बन के आनी है। ठीक है जी बन लो। जनाब करना खुदा का क्या हुआ कि शादी के दिन आ गया, दूल्हा बन के जनाब आए, दुकान से तय हुआ था कि जाहिर दुकान से उनकी बारात रुखसत होगी और वो जानी थी एक दूसरे महल्ले में। चले महल्ला मैं बता देता हूँ, ये जानी थी लोहारी में, चले ये आपके लिए इश्तिहाक का बायस होगा, लोहारी में जानी थी। बहरल महल्ले में जो एक साहब थे, उस जमाने में गाड़ियां कम हुआ करती थी, गाड़ी जनाब उनकी, उन्होंने कहा जी मैं आई एंड आई पलवान थी गड्डी, मैं चला के लेके जावांगा। वो एक हाई कोर्ट में मुलाजमत करते थे, वो भी एक अजीब ही शख्सियत थे, उन पे भी किसी दिन एक प्रोग्राम रखूंगा। जनाब अगली सीट पे बैठे जनाब, ये तो पिछली सीट पे इनकी वालदा और वालिद बैठे और बाकी जो महल्ले वाले थे, वो तय हुआ जी कि आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलेगी, इतवार का दिन था, रश भी कम होता था, बाकी सारे टांगे भी लोग बैठेंगे, लोहारी दरवाजे के बाहर जाके बारात रुकेगी, वहां से जो आई एंड आई पलवान है ये आगे लीड करेंगे जैसे रिवाज होता था। और उनको जो थे बाजे वाले, उनको कह दिया गया था बैंड जो था कि जी आपने वहीं पहुंचना है। जनाब आपको बताता चलूं, पलवान जी चूंकि आपको पहले किसी से पता लग चुका होगा, इतने ज्यादा अपनी बात मनवाने के आदी थे कि उन्होंने कहा कि जी मेरी होने वाली बेगम की ये ख्वाहिश है कि ये गाना चले, देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा ते वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। ये गाना जनाब उन्होंने कहा कि ये गाना लगाएं, वही जो बैंड था खूबसूरत सोनी जिसके क्लैरिनेट बजाते थे, खूबसूरत बजाते थे, उन्होंने यही गाना बजाया और क्या चार चांद लगाए उन्होंने। तो ये गाना उनकी मैं ख्वाहिश करूंगा कि जो हमारे रिकॉर्डर हैं कि ये वक्फे में यही गाना चलाया जाए। ये जनाब उन्होंने खुद जनाब कहा कह के, बड़ा अच्छा बैंड था, अंदरूनी शहर में बड़ा खूबसूरत बैंड था, आप जरूर देखिएगा। ये भी बताता चलूं कौन सा बैंड था, उस बैंड का नाम था सोनी बाजे वाला, सोनी का बैंड। बाद में ये लोग चले गए, बड़े खूबसूरत आदमी थे, वो बजाते थे क्लैरिनेट। बाद में सुने अरब के, सऊदी अरब के फरमान रवा ने उनको अपने पास दरबार में रख लिया, इतनी खूबसूरत धुने बजाते थे। तो उसी महल्ले के आसपास रहते थे, थोड़े पैसे देके वो आ गए, क्योंकि वो आई एंड आई जो है इतनी ज्यादा भोली तबीयत के मालिक थे, मासूमाना उनकी जो था चेहरे से झलकता था मासूमियत। तो जनाब उन्होंने बजाना शुरू किया आगे के बारात की। अच्छा उस जमाने में रिवाज था, इन्होंने स्पेशल जनाब सबने कहा यार एडे ज्यादा हार ना पाने की जी, नहीं मेरी बीवी होने वाली फरमाइश है कि तुसी 10 दे 50 दे ते 100 दे नोटा दे हार पाने ने। जनाब इन्होंने हार नोटों के पहने हुए जनाब और बारात चल पड़ी। उनका घर थोड़ा सा अंदर गली में जाके था, कल बाजार से गुजरे सारों ने देखा सूट पहना हुआ है, पेंट कोट, जाहिर है हाथ पूरे बंद नहीं हो रहे, खासे जुस्से के मालिक थे, आपको बता चुका हूँ, ऐसे चौड़े बाजू करके चल रहे हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर था, टाई बांधी हुई थी, सारे महल्ले वाले उन्होंने जनाब उनके पीछे पीछे। और साथ ही बताता चलूं चूंकि पैसा काफी था, रे बैन की ग्लासेस लगाई हुई थी, काले चश्मे लगाए हुए थे, उसके ऊपर रे बैन का स्टिकर भी, नहीं जी नहीं मैं नहीं लाना, लोगों को पता लगे बारात आई है, मजाक है, वो जनाब पहना हुआ है। वो पूरे महल्ले वाले बच्चे साथ साथ भाग रहे हैं। अच्छे साथ साथ जाते जाते जाते जाते अचानक क्या हुआ, जब लड़की का घर करीब आया, हम सब ने एक अजीब मंजर देखा, इस सोर से हमसे आगे थे, खुद इनका इशारा था जनाब ठहर जाओ, एक और चीज बताऊं इनकी, बड़ी मजे की बात, इन्होंने अपने जो सेहरा पहना हुआ था ना, उसके ऊपर सेहरे के ऊपर इन्होंने एक छोटा सा एक लाइट भी पहनी हुई थी जिस पे लिखा हुआ था स्टॉप। जेब में उन्होंने अपनी कोट की जेब में बैटरी रखी हुई थी और उसमें जो ही खड़े होते थे वो तो दबाते थे सेल को, बैटरी को, आया था स्टॉप, पूरी बारात खड़ी होती थी। जनाब घर के बाहर पहुंचे, आगे सीढ़ियां थी, तकरीबन 100 गज का फासला था, जाहिर लड़की वालों ने आना था इस्तकबाल के लिए, वो जनाब आए, एक अजीब मंजर हुआ ये, जो जहाँ तक आपको मैं लाना चाहता हूँ, हाई एंड आई के साथ हुआ क्या, रोजे बारात बाजू का ताक होता है, रोजे मैशर से कम नहीं होता, तो ये उनके लिए रोजे मैशर ही था, आप यकीन मुझसे मुत्तफिक होंगे, इत्तफाक करेंगे, हुआ क्या। हाई एंड हाई जनाब खड़े हो गए, हम भी सारे खड़े हो गए,
तब थोड़े से बातें करने लग पड़े। अचानक ही दुल्हन की गली में से 5-6 बच्चे निकले, उन्हें आके पायन पायन पायन उन्होंने जनाब कह के उनको गले लगाना शुरू कर दिया, जफियां डालनी शुरू कर दी। उनमें से 2-3 बच्चे जो बुलंद कामत थे, लंबे कद के थे, उन्होंने क्या किया, जो सारे नोट थे ना उसको नोचना शुरू कर दिया, उनके नोटों को नोचना शुरू कर दिया। और सारे 5-6 बच्चे थे, ये गर्मी खाए उनको इधर उधर हाथ चलाए, वो कहाँ छोड़ने वाले थे। जनाब इन्होंने सब हमें वादे देखे, रोको इन्होंने बच्चों ने जनाब जब तक ये करते, जाहिर आपको मैंने पहले बताया फरबा जिस्म के मालिक थे, लिहाजा जो बच्चों ने धक्कम पेल की नीचे गिर गए, जमीन पे गिर गए। और जो बच्चे कुछ नोट थे वो भी जनाब जो दूसरे बच्चे थे उन्हें भी नोचे। अब यकीन करेंगे कि शायद

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
3: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: Hey, this is Fakhar Abbas and you are listening to FM 92.6 UCB ki duniya. UCB ki duniya. UCB ki duniya.
1: Fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCB FM 92.6 UCB ki duniya.
2: एक नया अंदाज,
3: एक नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: एक नई लगन,
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान.
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से.
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन.
2: जब मिलती है लगन,
3: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया.
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6.
2: सुनते रहिए.
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं. जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं. जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं. ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं. इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो. पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: सूफी सिंग्स हू दैट विच इज दैट विच वॉज दैट विच विल बी।
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو اف ام 92.6 است بشنوید جهان یوسیپی

जंग जणू चुप चुपी ता वेख के पई आखण लोग मलंग असा खुबे गम दे खोबड़े साडे लंबे हो गए केस पाता ने बाने सोच दे असा बुंदे रहंदे केस साडे सर ते सूरज हाड़दा साडे अंदर सीत सया बिन छाउण चीतर रुख दी साडे अंदर बांबड़ बा असा मच मचाया इश्क दा साडे लूसे आ इक कलू असा खुद नू भुले सांवला सा हरदम जपया तू।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: admissions open for fall 2026. Explore the diverse degree programs offered by Faculty of Media and Mass Communication at University of Central Punjab. We are offering BS Media and Communication Studies, BFA Visual Communication Design, BFA Visual Art. Contact us at 080-000-827 or apply on admissions@ucb.edu.pk. Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab.
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
2: सूफी सिंग्स हू दैट व्हिच इज दैट व्हिच वाज दैट व्हिच विल बी।
3: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو اف ام 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

मैडम नूर जहाँ एक अहद थी, एक अदाकारा, एक इदारा जो दुनिया फानी से तो कुछ कर गई लेकिन नस्लों तक के सीखने को बहुत कुछ छोड़ गई। नूर जहाँ का शुमार इन फनकारों में होता है जो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनी, बल्कि तरन्नुम के गाए गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। 9 वर्ष की उम्र में नूर जहाँ की आवाज़ ने पंजाबी मौसीकार गुलाम अहमद चिश्ती की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। उन्होंने नूर जहाँ के लिए खसूसी तौर पर नाते, गजलें और लोक गीत कम्पोज किए। फिर नूर जहाँ का खानदान कलकत्ता मुंतकिल हो गया, जहाँ मारूफ गुलूकारा मुख्तार बेगम ने नूर जहाँ और इनकी दो बहनों की न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स को भी इनके नाम तजवीज़ किए। 1935 में उन्होंने पिंडी कुड़ी से अदाकारी का आगाज किया। इसके बाद फिल्म मिस्र का सितारा में अदाकारी के साथ साथ कई गीतों को अपनी आवाज भी दी। 1937 में बनने वाली फिल्म हीर सयाल में हीर के बचपन का किरदार अदा किया। फिर वो लाहौर चली आई और कुछ अरसा यहाँ गुजारने के बाद वापस बम्बई चली गयी, जहाँ अदाकारी के साथ साथ उन्होंने गुरुकारी का सफर भी जारी रखा। वो कुछ अरसे बाद वापस चली गयी, सारी तवज्जो प्लेबैक सिंगिंग।

मेरा माही चैन शरीरा, जिंदा है लाहौर, पाइंदा है लाहौर। ए पुत्र हटा दे नई विगदे, की लब दे फिरी बाजार कुड़े। मलका तरुण ने अपने मिली नख्मों से वतन की हिफाजत करती हुई गयूर कौम को पैगाम दिया, सियालकोट तू जिंदा रहेगा, तू जिंदा रहेगा, मेरा सोहना शहर कसूर नी। रब दिया रखा, ये वो गीत थे जिन्होंने पाक अफवाज के हौसलों और जज्बों को बढ़ा दिया।

1986 में जब वो शुमाली अमेरिका के दौरे पर थी तो इन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टर्स ने एंजाइना की तकलीफ बताई, जिसके बाद इनकी सर्जरी की गई। सन 2000 में कराची में इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। यूं ये दिलकश आवाज 23 दिसंबर सन 2000 को अपनी महक यहीं छोड़कर हमसे हमेशा के लिए दूर हो गई।

0: Admissions open for fall 2026. Explore the diverse degree programs offered by Faculty of Media and Mass Communication at University of Central Punjab. We are offering BS Media and Communication Studies, BFA Visual Communication Design, BFA Visual Art. Contact us at 080-000-827 or apply on admissions@ucb.edu.pk. Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab.
1: Assalamu alaikum, my name is Mohsin Nawaz, Faculty Management Sciences. Aaj hum FM 92.6 UCP ki duniya mein maujood hain. Aaj hamare saath do teachers maujood hain, ELC ke ma'am Sumaira and ma'am Nida. To aaj hum unse baat karenge ke importance of communication skills ke bare mein, ke hame kitni zarurat hai communication skills ki aage badhne ke liye. To sabse pehle hum ma'am Sumaira se baat karte hain.
2: Assalamu alaikum and good morning everyone. I'm Sumaira Latif and I'm working here at the UCP since 6 years. I'm working in a very important department of the UCP, that is English Language Center. English Language Center mein main as a skill center kaam kar rahi hoon pichle kuch arse se. So aaj jo hai main aaj yahan par aapke saath maujood hoon, to hum thodi si baat karenge iske upar ke that why it's important to learn English language skills in today's world. To hum jo hai iske upar aapke saath apne views share karenge so that you people can also learn that if you people are lacking in confidence or if you are unable to speak English, how you can improve yourself and your English language Correct. Skills.
3: Assalamu alaikum. My name is Nida Qadir and I'm the team lead of English 2 at English Language Center. Thank you for actually the opportunity to let me join Ms. Sumaira today here for this talk. I'm privileged and I'm glad. Main bhi chahti hoon ki mere students is cheez ko jane aur is cheez ko samjhe why communication skills and English language in this global world is so much important today. Why we need to have a proper understanding of the language and why is it so important in every department and in every student from every faculty to learn this language and be proficient in it. So we are going to give you a few tips on it and I hope you will learn something from it at the end.
1: Thank you ma'am Nida, ma'am Sumaira. Iske saath saath hum baat karenge ki hamari language kitni zaruri hai hamari zindagi ke liye, importance of language. To main ma'am Nida se kahunga ki wo iske bare mein bataye.
3: From a teacher's point of view, I can surely give this one tip to my students ke language, jaise aapki ek native language is important and naturally it comes to you. Same is the case with the targeted language, which is our English language. And when we talk about ELC, which is the English Language Center here, which is more likely, you know, works in collaboration with the FOLL, which is Faculty of Language and Literature, we tend to focus on these main goals to give the opportunity to our students ke wo ek language ko na sirf ek you know samjhe ya usko yaad kare, but it should come naturally to them. Naturally se murad hai ke they should be so much you know proficient in it ke wo skill ko behtar tarike se use kar sake in their future aur unko ek real life experience bhi diya jaye for the future as well. आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप्स आउट देयर. दे आर गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज, दे आर गोइंग फॉर पीएचडी, दे आर गोइंग फॉर डिफरेंट रिसर्च प्रोग्राम्स. सो इट्स इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपके जो है साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी हो ताकि आप कहीं भी किसी भी मुल्क में जाके अपने आप को जो है किसी भी एक लेवल पर लैकिंग फील ना करें. यू शुड बी कॉन्फिडेंट टू यूज़ द टारगेटेड लैंग्वेज एंड यू शुड बी यू नो एबल टू यू नो एक्सेल इन एवरी फील्ड. सो despite you know having you know reserving ourselves to any of the you know simple department or any English department, we tend to you know spread or we tend to you know give our knowledge or share this knowledge to every department. So we have been working in different departments, right Ms. Sumaira?
2: Yes, बिल्कुल. हम जो है ना इस वक्त यूसीपी में जो है वो 9 डिफरेंट फैकल्टीज के साथ जो है वो हम काम कर रहे हैं. लाइक वी आर वर्किंग विद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, वी आर वर्किंग विद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, वी आर वर्किंग विद इंजीनियरिंग एंड आईटी स्टूडेंट, राइट? सो डिफरेंट फैकल्टीज वी आर केटरिंग राइट नाउ. इन एवरी सेमेस्टर वी केटर, राइट? सो लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड वी आर ऑलरेडी फेमिलियर लाइक विद इट एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर स्ट्रगलिंग विद इट. कुछ के लिए जो है वो लैंग्वेज लर्निंग बहुत ईजी हो जाती है, कुछ के लिए जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है, स्पेशली
3: क्योंकि स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं. ठीक है, नॉट टू बी ऑफेंसिव टू एनीवन, बट ऑफ कोर्स दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. कुछ बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी उनकी बेस इतनी बेहतर होती है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, सो इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग फॉर देम टू लर्न. बट वेन इट कम्स टू डिफरेंट स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, उनके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही हमें डिवेलप करना इज आर प्रायर गोल वेन एवर वी यू नो टारगेट आर स्टूडेंट. So we try to make it easier for them to learn. So that's why we have devised so many different techniques and strategies in our ELC. We have designed a course in such a way, which is, you know, totally taken from the Cambridge University. So we introduced such kind of, you know, courses into our department, jo ke hamare student ko cater kare, that will, you know, just help them out in understanding how to target four of these skills, jo ke hain aapki reading, writing, listening and speaking. So we tend to focus each of these skill at one time and try to polish our students effectively in that.
1: साथ आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसा कि आप यूसीबी में एक स्किल सेंटर को लीड कर रही हैं, तो उसमें लैंग्वेज को बेहतर किया जा सकता है इससे कि नहीं, ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा.
2: अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे आपको ये बताना चाहूंगी कि लाइक एस्टेब्लिशिंग अ स्किल सेंटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, राइट? बिकॉज स्किल सेंटर जो है वो एक इनक्रेडिबल रोल प्ले करता है फॉर वेरियस रीजन इन टूडेज इंटरकनेक्टेड एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. लाइक हम सबको पता है कि दुनिया जो है वो एक ग्लोबलाइज विलेज बन चुकी हुई है, तो इसमें जो है वो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. या स्किल सेंटर की बात करेंगे तो स्किल सेंटर बेसिकली लाइक इसका रोल बहुत अहम है स्टूडेंट्स की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि अपने एकेडेमिक और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहते हैं. तो स्किल सेंटर में लाइक हम वहां पर जो है ना बहुत ही उनके बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, राइट, किस तरह से लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हैं, वी हाउ वी मेक इट आई मीन मोर इजी एंड सिंपल फॉर द स्टूडेंट टू लर्न, सो दैट कि अगर उन्हें कहीं पर कोई भी इशू है इन देयर एकेडेमिक कैरियर और इन देयर प्रोफेशनल कैरियर, सो हम वहां पर उनकी उन शॉर्टकमिंग्स को जो है वो लाइक वी ट्राई टू ओवरकम. उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, वी यूज डिफरेंट टीचिंग मैथड्स, उसके लिए हम डिफरेंट लाइक वेरी इनोवेटिव काइंड ऑफ जो सपोर्टिव मटीरियल है वो हम यूज करते हैं. तो जो बेसिकली जो स्किल सेंटर है, इट इज़ देयर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, राइट? स्किल सेंटर जो है बेसिकली यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के जो है वो लिसनिंग, रीडिंग, जैसा कि मिस रिदा ने मेंशन किया है कि ये जो हमारी जो बहुत बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, हम उनकी इन अबिलिटीज़ के ऊपर जो है वो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंग्लिश काम करते हैं. और आप सबको पता है कि लाइक दीज आर वेरी क्रूशियल इम्प्रूवमेंट इन दीज स्किल्स, इन दीज लैंग्वेज स्किल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आप जितना अच्छा किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे, आप कितना लाइक अच्छा अपने दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकेंगे, तो उतने ज्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल पर्सन जो है वो आप कंसिडर किए जाएंगे. तो बेसिकली जो है वो हम स्टार्ट करते होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्प्रूवमेंट के ऊपर, के जो है ना लाइक वी टेक स्टार्ट फ्रॉम द जीरो के ऊपर. हम बहुत ही बेसिक लेवल जो होता है हमारा A1, हम जो है उस कैटेगरी के स्टूडेंट से, उस लेवल से स्टार्ट करते हैं. वी प्रोवाइड डिफरेंट एक्टिविटीज, लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं हम स्टूडेंट को, बहुत ज्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट देते हैं.
3: तो ये सिर्फ जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट, आई एम कटिंग हियर, वी डोंट कंसिडर आवर स्टूडेंट एज एम्प्टी वेसल्स, जिसे आप कहते हैं ना, कि हम ये नहीं उन्हें समझते कि उनको कुछ भी नहीं आता. आई एम श्योर दे हैव लर्न समथिंग इन देयर लाइफ, तो वी जस्ट ट्राई टू टेस्ट उनकी प्रायर नॉलेज एंड देन वी ट्राई टू सेट अ बेस ऑन इट एंड देन वी यू नो थ्रू डिफरेंट यू नो एक्टिविटीज, थ्रू डिफरेंट यू नो मे बी वर्कशीट्स एंड थ्रू डिफरेंट यू नो एक्सरसाइजेस दैट वी डू विद आवर स्टूडेंट्स, वी ट्राई टू पॉलिश दोस skills. तो अब उसमें जो हमारा मेन टारगेट, अगर आप स्पीकिंग की बात करें, तो उनकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना, उनकी प्रोनाउंसिएशन पर काम करना, ये हमारे गोल्स होते हैं. रीडिंग की बात करें तो उनकी एनालिटिकल स्किल्स पर हम काम करते हैं. अगर आप उनकी राइटिंग की बात करें, तो वी टेंड टू सी हाउ दे एनालाइज अ टेक्स्ट एंड हाउ दे राइट इट इफेक्टिवली, हाउ दे आर एबल टू प्रोड्यूस एंड क्रिएट एट द एंड on their own. So ye hamare main goals hote hain. And of course, students are at the highlight, right, Ms. Sumaira?
4: हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स, FM 92.6 UCP की दुनिया। तो आज हम बात कर रहे थे कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब मैं सुमेरा से ये पूछूंगा कि कॉन्फिडेंस किस तरह बेहतर हो सकता है स्टूडेंट्स का इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, कि वो मजीद इसमें बेहतरी ला सकें। तो इसके बारे में आप अपनी राय बयान करिएगा।
4: अच्छा, थैंक यू सो मच मोहसिन। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, क्योंकि अक्सर हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि लाइक आवर स्टूडेंट्स दे फील वेरी शाई व्हेन दे हैव टू स्पीक इंग्लिश, व्हेन दे हैव टू एक्सप्रेस देम इन इंग्लिश। उसको जो है ना बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, वो नर्वस बहुत ज़्यादा फील करते हैं। तो चूंकि मैं स्किल सेंटर को लीड कर रही हूँ, स्किल सेंटर के स्टूडेंट जो कि हम बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, तो इसमें हम स्किल सेंटर में बेसिकली वी ऑफर्स अ वेरी सपोर्टिव काइंड इन्वायरमेंट टू आर स्टूडेंट, राइट, जहां पर जो है ना वो विदाउट द फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक दे कैन प्रैक्टिस देयर एक्टिविटीज। ठीक है, हम उनको गाइडेड लेसन्स और गाइडेड प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं, जहां पर उनके थ्रू जो है वो लर्नर जो है वो कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और वो अपनी एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश वो उसको बहुत ज्यादा बेहतर कर लेते हैं। हम और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि लाइक द सिचुएशंस और द सिनेरियोज विच वी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट, जो कि हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दे आर नॉट ओनली रिलेटेड टू द क्लास रूम, हम उनको रियल लाइफ सिनेरियोज और सिचुएशन दे रहे होते हैं, सो दैट जो कि है वो आउटसाइड कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर सके। वो एक सिंपल कैजुअल कॉन्वर्सेशन से लेकर प्रोफेशनल मीटिंग्स अगर उनको डील करनी है तो उसको वो इंग्लिश में डील कर सके। तो वहां पर जो है ना हम लाइक वी प्रोवाइड लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, उनको सिनेरियोज देते हैं, हम उनको जो है ना बाहर क्लास से बाहर भेजते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज, जहां पर उन्होंने लोगों के इंटरव्यूज करने होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी और यूनिवर्सिटी के बाहर भी, फिर इंटरव्यूज को जो है वो रिकॉर्ड करना
5: भी किए जा सकते हैं उनके साथ।
4: तो जो है हम उनके साथ ये चीजें सारी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जैसा कि लाइक मैं स्टूडेंट के साथ एक मॉक इंटरव्यूज का सेशन भी बिल्कुल एंड के ऊपर करती होती हूँ, सो दैट आई कैन प्रिपेयर देम टू हाउ टू अपीयर इन एन इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली।
5: एंड आई थिंक क्लासरूम इज इन इटसेल्फ बिकम्स यू नो अ प्रैक्टिस रूम फॉर द स्टूडेंट्स टू हेल्प एंड फेस इन द रियल वर्ल्ड, राइट। सो वी डोंट यू नो जस्ट रिजर्व आवर स्टूडेंट्स इन टू दैट क्लासरूम, हम उनको मोटिवेट करते हैं। एंड आई थिंक इसमें एक टीचर का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि उसने एक ब्रिज के तौर पर अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना होता है कि वो एक टारगेट लैंग्वेज को कैसे सीखे, उसको किस तरह एक्वायर करें ताकि वो उसका बेहतर इस्तेमाल कर सके इन द रियल वर्ल्ड। सो हमारे यहाँ पर एक इंथुजियास्टिक टीचर की बहुत ज़्यादा जो है एक आई वुड से एक ज़रूरत रहती है, कि आप एक टीचर जब तक कॉन्फिडेंट नहीं है इन द टारगेट लैंग्वेज और इन द यूजेज ऑफ इट, हाउ वुड ही और शी वुड बी एबल टू यू नो मेक इट मोर यू नो कम्फर्टेबल फॉर द स्टूडेंट टू लर्न, राइट। वी ट्राई टू मेक श्योर कि हमारे टीचर्स जो हैं वो ब्रिज करें उस गैप को टू मेक द स्टूडेंट मोर कॉन्फिडेंट, दे आर फ्री टू मेक मिस्टेक्स इन द क्लासरूम, एंड ऑफकोर्स वी प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू देयर यू नो एनी ऑफ द मिस्टेक्स दैट दे डू इन द क्लास, एंड ऑफकोर्स वी ट्राई टू यू नो लर्न विद आर स्टूडेंट्स एज वेल, वी ट्राई टू लर्न डिफरेंट कल्चर्स टूगेदर, वी ट्राई टू लर्न डिफरेंट यू नो बैकग्राउंड्स, वी ट्राई टू लर्न आर स्टूडेंट्स यू नो एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे आर हैविंग, एंड देन वी टारगेट यू नो इट वन बाय वन। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे लिए, हमारे टीचर्स के लिए, कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्लासरूम, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा एम्बियंस क्रिएट करें जो कि बच्चों को एक फ्रीडम प्रोवाइड करें, एक कम्फर्ट लेवल हो उनका टीचर के साथ, कि वो अपनी हर तरह की प्रॉब्लम्स या जो भी उनकी एक स्किल है जो उनमें लैक करती है वो वहाँ उनके पास फ्रीली उनसे डिस्कस कर सकें और टीचर इंडिविजुअली उन पर फोकस करें और उसको पॉलिश भी करें। मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स एक्चुअली कम्स टू मी एंड दे जस्ट शेयर द प्रॉब्लम विद मी, and I try to focus on it, I try to you know give them extra time if I have, and I try to guide them along. So it's really important, I think, ke teacher bhi apne student se utna hi jo hai mohabbat kare ya utna hi unko time de jitna student ek apne aap ko behtar banana chahta hai.
4: अच्छा, मैं यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करूँगी कि लाइक आई हैव ऑब्जर्व मेनी टाइम दैट कि एज फार एज टीचर इज स्टैंडिंग इन द क्लास, राइट, द स्टूडेंट्स दे स्पीक इंग्लिश, राइट, दे ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाती है दे स्टार्ट स्पीकिंग इन उर्दू, फायर वो उर्दू में बात करना शुरू हो जाते हैं। तो जो है ना लाइक इसलिए मैं उनसे हमेशा ये इनको एडवाइस करती हूँ कि आप लोग ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विद ईच अदर, सो दैट यू कैन आई मीन ओवरकम योर नर्वसनेस। आप चाहे बेशक मैं एक लफ्ज यूज करती होती हूँ कि जो टूटी फूटी इंग्लिश है आप उसको ही यूज करें, ठीक है, बट एट लीस्ट ट्राई टू यूज विद ईच अदर, सो दैट यू कैन डिवेलप कॉन्फिडेंस, सो दैट कि जब आप बाहर जा रहे हैं, क्लास रूम से बाहर जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी से बाहर, लाइक आपको किसी भी किस्म की सिचुएशन है, यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंस।
5: मेरा ये अक्सर आपसे आई एम श्योर स्टूडेंट्स पूछते होंगे, क्योंकि मुझे भी अक्सर पूछते हैं कि मैम अगर हमें अपनी लैंग्वेज बेहतर बनानी हो, अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज पे काम करना हो, या इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी, हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो आई नेवर यू नो आस्क देम टू रीड एनी ग्रामर बुक और एनी ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज दे ऑलरेडी नो इट, राइट? इट्स ऑन देयर टिप्स. जो बेहतर उनके लिए तरीक़ेकार है वो ये है कि दे शुड स्टार्ट रीडिंग मे बी सम शॉर्ट स्टोरीज, रीड सम बुक्स विच इज़ यू नो हैज सम इंफॉर्मेशन, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर यू नो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, राइट? सो ये जब मैंने आई थिंक बहुत ही शुरू में कहा था कि इट शुड कम नेचुरली टू यू, इट मीन्स कि जिस तरह आप एक उर्दू को एक्वायर करते हैं बिल्कुल यू नो बचपन से ही, उसी तरह अगर आप लैंग्वेज को भी एक नेचुरल वे में लर्न करने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है. तो बुक्स इज द फर्स्ट चॉइस. यू कैन ऑल्सो रीड सम आर्टिकल्स इन न्यूज़ पेपर, एंड ऑल्सो यू कैन वॉच अ मूवी और इवन लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स, एंड इवन मे बी वॉच अ सीजन विच इज़ क्वाइट यू नो वायरल दीज डेज. तो आप वो पढ़िए, देखिए, एंड यू विल लर्न हाउ टू यू नो एक्वायर अ लैंग्वेज. This should be the focus of the students.
3: जी थैंक यू मैम. मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मुझे इस बात की बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये सीखने से, ये लिखने से आती है कि बोलने से आती है?
5: बोथ.
4: बोथ. आपको लिखना भी, लिखने से भी आती है, लेकिन जो है ना ज़्यादा आपको पढ़ने से आती है. आपके जितना ज़्यादा आप रीड आउट करोगे आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ होगी, आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ होगी.
5: एप्टीट्यूड आई थिंक.
4: बिल्कुल.
5: एप्टीट्यूड मैटर्स अ लॉट.
4: और आपकी मोटिवेशन भी इसमें होनी चाहिए.
5: एंड द मोटिवेशन दैट रियली हेल्प्स यू अ लॉट. So it's not just about reading or targeting one skill. That's why we focus on four of these skills.
4: Four of the skills.
5: तो ये चारों का होना बेहतर.
4: तो आपके जो है ना, जो आपकी एक इनर मोटिवेशन, आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन जैसे हम कहते हैं, उसका होना भी बहुत
5: जरूरी है.
3: जी मैम, मैं इसके साथ आपसे ये पूछना चाहूंगा मैम सुमेरा से कि मैम एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इसका क्या बेनिफिट है स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज से.
4: अच्छा, मैं स्पेसिफिकली अगेन बात करूंगी स्किल सेंटर के हवाले से कि लाइक एट द स्किल सेंटर वी प्रोवाइड लर्नर विद एक्सेस टू अ वेल्थ ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज. हम उनके साथ ऑडियो विजुअल मटीरियल जो है वो शेयर करते हैं. हमारा एक इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है, वो लाइक अ वेरी इंगेजिंग काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है. इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग टूल्स हैं जो कि हम क्लास में यूज करते हैं. तो बेसिकली द एक्सेस टू दीज वराइटी ऑफ रिसोर्सेज ये जो है वो लर्नर्स को इंगेज करते हैं विद द लैंग्वेज इन डिफरेंट वे, राइट? मेकिंग एंड उनके लिए जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है उसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, एंगेजिंग और इजी बनाते हैं. तो हमारे पास जो है ना इधर यहाँ पर स्किल सेंटर में, कभी आप लाइक इफ यू कम टू आर क्लासेस तो आप देखिए कि हमारे पास बहुत ही डिफरेंट काइंड्स के जो है वो रिसोर्सेज हैं, और उसको आप बिल्कुल आप विटनेस करेंगे कि स्टूडेंट्स दे एक्चुअली लर्न द लैंग्वेज थ्रू देम.
5: Okay, and we try to make it, you know, more likely, you know, an enthusiastic and an energetic, you know, environment for our students. हम लोग सिंपली इसको एक जैसे कहते हैं ना कि बाकी यू नो सब्जेक्ट्स की अगर आप बात करें तो वो सिंपल वही नहीं होता कि यू जस्ट लर्न अ फार्मूला एंड देन यू ट्राई टू प्रूव इट एट द एंड. इट्स नॉट लाइक दैट. इंग्लिश इज मोर लाइक यू नो गेटिंग क्लोज टू योर इन नेचर, ठीक है? बी इन सिंक विद योर सोल एंड बी इन सिंक विद योर ट्रू पर्सनैलिटी. तो जितना आप अपने आप को बेहतर और पॉलिश करते हैं उतना ही आप इम्प्रूव करते हैं इन योर फ्यूचर एंड इन योर करियर एज वेल, ठीक है? तो ये आपको बेसिकली आपके फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है. तो इफ़ यू डोंट हैव यू नो प्रोफिशिएंसी इन द टारगेटेड लैंग्वेज विच इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कोर्स, तो आप एक्सेल नहीं कर सकते हैं इन योर प्रोफेशन एज वेल, ठीक है? तो अगर आप ये अगर आप सोचें अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक्सेल करेंगे इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलते हैं, ठीक है? करियर में आपको डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा आपकी जो है हेल्प आउट करते हैं. सो दिस इज़ मोर लाइक यू नो अ फूड फॉर थॉट.
4: हाँ, करियर के हवाले से अगर हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी बहुत सारी वो जो स्पेसिफिकली मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं तो वहाँ पर बीइंग प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश इज़ अ वेरी की फैक्टर फॉर योर प्रमोशंस एंड फॉर योर सक्सेस. दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट? बिकॉज हम जानते हैं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में इंग्लिश जो है वो एक डोमिनेंट लैंग्वेज है और फ्लुएंसी दैट कैन ओपन डोर्स टू प्रमोशंस, टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और टू बेटर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, राइट? सो इट हेल्प्स यू इन your career advancement as well.
5: So you don't only learn the content, you also learn the technique to, you know, excel.
3: जी थैंक यू मैम सुमेरा, मैम नीता. लिसनर्स, हम एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं. हमारे साथ रहिएगा FM 92.6 UCP की दुनिया.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
2: यूसीपी की दुनिया, आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।